अल्ट्रासाउंड किया है, उसे कहा कि आपका बच्चा कमजोर है, आप रोजा ना रखें। औरत खुद तंदुरुस्त है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। इस सूरत में औरत रोजा नहीं रखेगी बच्चे की वजह से, लेकिन रमजान के बाद कजा करेगी, यानी डिलीवरी के बाद कजा करेगी। कजा करना फर्ज है और एक मिस्कीन को साथ खाना खिलाएगी, क्योंकि उसने रोजा नहीं रखा किसी और की वजह से, अपनी वजह से नहीं। दूसरी सूरत है अगर बच्चा तंदुरुस्त है और औरत खुद कमजोर है और डॉक्टर्स ने यह कहा कि आप रोजा नहीं रख सकती, रोजा ना रखें, उस औरत पर रोजा रखना फर्ज नहीं, यह मरीज की शक्ल अख्तियार कर ली जाए कर लेगी और बाद में सिर्फ कजा करेगी रमजान के बाद, डिलीवरी के बाद सिर्फ कजा करेगी, साथ किसी मिस्की को कफारा है कोई नहीं, कोई किसी मिस्की को खाना नहीं खिलाएगी। दूध पिलाने वाली औरत कब यही हाल है, अगर उसने दूध पिलाना है और वो खुद कमजोर है, बच्चा तंदुरुस्त है और वो रोजा नहीं रखना चाहती खुद अपनी कमजोरी की वजह से, तो सिर्फ कजा करेगी, कजा उस पर फर्ज है बाद में। और अगर बच्चे की वजह से बच्चा कमजोर है, खुद तंदुरुस्त है और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है, तो औरत को चाहिए कि रोजा ना रखे, बाद में कजा कर ले और एक मिस्कीन को खाना खिलाए जितने दिन वो रोजा नहीं रखती। अब मुख्तलिफ अहकाम और मसाइल हैं कजा और कफारा के मुतालिक। अगर दिन के वक्त रमजान का ऐलान हो, रात का ऐलान नहीं हुआ, दिन हो गया और दिन को 10-12 बजे ऐलान हुआ है कि आज रमजान का पहला दिन है, क्या करना चाहिए? फौरन रोजा रखना चाहिए और बाद में कजा करना चाहिए। रोजा क्यों रखें? क्योंकि रमजान के दिन का रोजा फर्ज है। कजा क्यों करें? क्योंकि हमने पूरा रोजा नहीं रखा, शुरू से नहीं रखा, और रमजान का दिन जैसे मैंने शुरू में बयान किया था एक ही रुकन है, सूरज गरूब सूरज सुबह सादिक से लेकर फजर की अजान से लेकर मगरब की अजान तक, सूरज गरूब होने तक रोजा रखना, यह रुकन है रोजे का। और जब दिन के 10 या 12 बजे कोई शख्स रोजा रखे तो उसका रुकन पूरा ना हुआ, इस मतलब इबादत अधूरी हुई और अधूरी इबादत अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल नहीं, तो कजा फर्ज है। अगर कोई शख्स चांद को देखे खुद लेकिन ऐलान ना हुआ हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ, उसने खुद देख लिया, उस पर फर्ज है कि वह रोजा रखे अकेले, तो उसने देखा है। जिसने नहीं देखा वो नहीं रखेगा, आपने देखा है मैंने नहीं देखा, आपने मुझे बताया है, गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया है, आप रखेंगे फर्ज है, मैं ही रखूंगा। आप क्यों रखेंगे? क्योंकि आपने आंखों से देखा है। मैं क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि लोगों ने रोजा नहीं रखा। वही हदीस, रोजा रखना लोगों के साथ और अफ्तार लोगों के साथ करना। अगर रोजे के दौरान हल्क से खून निकल आए या नाक से खून निकल आए और हल्क में थोड़ा सा चला जाए तो रोजा दुरुस्त है, रोजा नहीं टूटता। आगे इंशाल्लाह तफसील बयान करूंगा। अगर कोई किसी शख्स पर रोजे की कजा फर्ज हो गई हो और उसने कजा नहीं की, दूसरा रमजान आ गया है, अभी तक पिछले रमजान की कजा नहीं की, दूसरा रमजान आ गया है, तो इस रमजान के रोजे पूरे रखेगा। इस रमजान के बाद वो पिछले रमजान के रोजे जो नहीं रखे, जो कजा थे, वो दूसरे रमजान के बाद रखेगा और साथ एक मिस्कीन को खाना भी खिलाएगा कफारे के तौर पर। अगर कोई शख्स मर जाए और उस पर कजा फर्ज हो तो क्या करें? उसका वारिस उसकी जगह रोजा रखेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और उस पर रोजा फर्ज हो तो उसका वारिस जो है उसकी तरफ से रोजा रख ले। अगर कोई शख्स जिस पर रोजा कजा करना फर्ज था, यानी शख्स मरीज है उसे रोजा नहीं रखा, अब कजा उस पर फर्ज है लेकिन वो तंदुरुस्त हुआ ही नहीं, पहले ही मर गया, तंदुरुस्त नहीं हुआ पहले ही मर गया, तो उस पर कजा फर्ज नहीं थी और कोई भी शख्स उसकी तरफ से रोजा नहीं रखेगा।
دوسری